तावीज़े बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ। Was this what the Quran Sharif was revealed for? The Quran Sharif is lamenting, it is complaining that I'm used for tawizes, I'm used for this, I'm used for that. I'm the decoration of the shelves. Juzdan harir o resham ke aur phool sitare chandi ke. Juzdan harir o resham ke aur phool sitare chandi ke. फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। But then if you look at our condition today, hey, मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के। हे मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के।

कहूं काश होता मदीने में मेरा वतन, फिर मदीने की लज्जत को मैं क्या कहूं, काश होता मदीने में मेरा वतन। किस तरह मैं कहूं दिल से ऐ दोस्तो, किस तरह मैं कहूं दिल से ऐ दोस्तो,

दिल से ऐ दोस्तो जिंदाबाद ऐ वतन जिंदाबाद ऐ वतन। शहर महबूब होगा जहां भी कहीं, शहर महबूब होगा जहां भी कहीं, आशिकों का सुना है वही है वतन। फिर मदीने की लज्जत को मैं क्या कहूँ, फिर मदीने की लज्जत को मैं क्या कहूँ,